नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: taken from his album Kabhi To Nazar Milao, the title track. Adnan Sami, Asha Bhosle. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज ट्यूजडे द 1st of September की सुबह शबनम साही के साथ, जहां भी आप सुन रहे हैं, जो भी इस वक्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त, ऑन ट्यूजडे ऑन द 1st of September एट 10:32 बताएंगे मुझे. 07925-702-72 द नंबर फॉर दैट. मिस्टर खान अर्ज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जाकर जब ढूंढा ना, तब आपका शेर नजर आया मुझे. मिस्टर खान, आप कहते हैं, गलती हमारी थी जो हम उनसे ज्यादा बात करने लगे, गलती हमारी थी जो हम उनसे ज्यादा बात करने लगे, जब हो गई हमें उनकी आदत तो वो हमें नजरअंदाज करने लगे. वाह.
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय स्टार प्लस, स्टार गोल्ड एंड स्टार भारत.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. Channel partners Top Up Foods and Pari Basmati Rice.
3: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.

0: TV.
1: My ears, best piece of musical equipment I own. They've been with me through everything, even the 90s. Back when you'd hear about parties from photocopied flyers, before outdoor raves moved indoors. And now, the music's changed, but I wanted to make sure my ears had them. So I did the free online hearing screener from Specsavers and got on the test list. Only took 3 minutes. It's like my own little sound check. Try Specsavers free online hearing screener. Visit the website to find out more. Hearing screener is not a diagnosis.
2: हिमालय कारपेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है 500 से ज्यादा कारपेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस हिमालय कारपेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक Everyday Grand.
4: Pepe's Piri Piri presents Jubin Nautiyal live in concert.

0: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
1: अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
2: शिकवे शिकायतें तुमसे।
3: Watch सहर होने को है Monday to Friday 9 PM on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.
4: Sunrise Radio par is ghante ka hamara hit of the hour, taken from the film Bhoot Bangla. This film features on the list of the top 5 highest grossing films of 2026 so far. Was it any good, really? Arijit Singh ne Geeta Gandhi, Tu Hi Dista. Good morning.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।